0: ཁང་གལ་ལ་པ་ནི་ཐུ་ཅི་ཐུ་ཤིན་སང་ང་འཇང་གི་དེ་ན་སེམས་དེ་ངོ་མ་ངོ་ཏང་ཝ་ཚང་དེ་ཅི་རེ་ད་འཇང་ཡིན་ན་ད་ད་མོ་རང་པ་རེ་དེ་གོང་སར་ཐེ་ཇ་ཀེ་པེ་ཀེ་ཅི་ཡིན་ན་ཤོང་ཆུ་པ་སེན་ན་མ་ཤོ་པ་ཅི་ཡོ་མ་ང་ན་ཡིན་ན་དོ་མི་པེ་ད་སང་དེ་རེ་དེ་རེ་ད་ང་ནི་ད་ཚ་བོ་མ་རེ་རེ་དེ་གོང་ད་ད་ལོ་ཇོང་ཤེ་གུ་སར་མུན་ཐུ Tamina, Rinchen Nanja.
1: Lassa.
0: Pindina, Karachi, Kamahian.
1: J.
0: Ni Kamahianina, Tag Kayozu Satin Rinders.
1: Low Zin Satin, so and so Kamagadrika low that
0: is Rindolis, Kamagadri. King Emaza Chunjik, Chunji de Kamagadri.
1: Lassa. Tagin Kamadela, Yina. Then hung a jubak, tinnicho, the regional make hot the array, then hung a two gigama delena ina, the jacarim by inanda, the kanda, Zambalina send a chujirom, Casaca locate a chuba than the chiri, the two the rinchinzo inataji, Ninianda, the rinchin rojira, Shinzo juba, Mati, Sanda, Sochuan, Rojushi, Sanda, the Nimangazuki, Sanu, the day, Dam Muntin and Zuke, Kamakahu College, he on the Zama, youngest Gadison, Nanzo and Richie Sanu Dona Chusari. Kama gaji se yate ta ta ta ngan chu thong ji yoba te mura som ni ye ba se chu ju ru ko la gen yob de ka ta ba ne na gen khon da ye na ta khon ko lo ma mong bo che so chung si mong bo so chung si ji de kan de re se na jana la so ba ta ka sa ka gu la so so ka ta ji ge thu te ne mong bo che yo re a ni ne ta te ke pu ju ka ta te yang te ke ge thu te so ye na ta se la pha so she ge ha sa ye nan da ya mi na jana ka sa cha ka sa ka gu la yang su su ke te ta pe tong ya ten ji ani su ma ma le su ma nei na ta rin chin ta bu ka ta jana ka chun zhi mo te di ni nyang ji si ni ta te la ya yang xia sa tui ta bu nei ma re song ka tan ji se na de ten de ji xie na zong pe ya bu ya sa re san san de ji re la ta yong zu ta bu nei na che tho tam bu ji ri ne ten de ju da yin nan chan don zi da yin na ta pa ka le wan da te kan de da yin na che ta ta sa na pa che te kan de tho ya sa re
2: ta zo chang ari ge ga yin da se ge ma ri ma pa chi hun ji kon di ni go zu te ran don zi ba si ji ga bun da ye ti ji ge gin ke ko kan da che yo ri ta ge gin yo mo thu ji te ngo ma se no chen bu ring ge chen un do ko yong ge da ta pa si de si un de o nga Hundi kundi inari, lochin kundi inari, o thora kundi inari. O gege yangu tana kere yue song di nguma, tada zo chenpo zhangu, suyo na chenpo zhangu ringa zhin. Tan leka kar zi chadi o, di jun leda jadi, ta runga leka, tuya chandro di zanju do, ta meso yore kwa. Ta yi kundi o, ta ndonzi shiri koka yue na, o, ta tanda shigonda pe ju yue na, o ndonzi padi gui singa se na, kare kure jake gui se wanda, kare kure peke gui se wanda. ते तने ना सी दी यों टोंग मंग यों ग्यों गान दा इना फोचु जुटे छ दी ते नो सिन जिरा जुस र को आ ते पे ई खा लंग मा फटोंग दुब थे र ग त ngari ng ke xuan cha de de jin du cha di o pe ई jong ni ko ka ya na yong टोंग यो सान ग सों सों ओ ता ngari ng ओ ते खा ल ता या या जेन जो ग सान ग सों दु ते यों ग पे ग ग दों जि पा सि रो जि से ओ दि ng खे लिंग ग यो छे जि रि से ना ओ ता ng हो जो छि दि ग को का दि रि ग सों दम से ति जु ना ओ ले का मो बों दा दि ओ को चे ना ngari ng ओ दे दि ता ना ता टोंग दि जों ग ग सों ना से नो तने दे जे दे ना ओ लो ले शे का मो मा दा दि रे दु ता सं ग
1: ते लंसा लंसा जि ति मो यो ना
2: ते ओ तान दुन्जि पान्दा सि गु उन दि ओ ता खात ना ल रों हे के बुत द जों छा दु ह्या ल न्यान द रों ग के चा नों दे मे तो दि ह्या गु ना ता ह्या मा त यि ल गे मु खु लि ग ल्या का ना दि जेंग सों सों दा दि रों से नो तने सों बा दि छा दि ते ओ ता रों त्रिन दुन्जि ग नों दे छि नि ना ते ये को ल लो जों सि उन दि ओ ते न्या मु म दा ग
1: जे ला ता गा छु ग सि ता थो ने छान दो ग यन सि नाम बा जी लोरे ने लोरे तिने तिरे के फोंजु ता तिने मन्ते द ता सोसो के शाया थोने न जा सोसो के गाशु देला जंबा से ता से गिबे गा जे आ यंग सो गन सो ता चेनी ता बे न ता लो निन तु ने खु चांग ने ने खु चा रुलो ल छ सिदा जुन जी बा छे बा सों जु सो जे ला दुजु जो बो से ता छ छंदो के गेजि नंबर के पेजु के सिगु जे यो रा दे नों के ता जो गे खु मन दा चेनी रेन दो चेनी तने जे से ने जंबा दे दे जमा गा ए न्यान दो ह्यु ब रे ओ यन से मंग बु जे थु शों ओ सोसो के पुसान क्या दे बा रे क्या दे मां मुझे तो जे चेनी सना ता ngui ma ta lo khai ki ko ngun da do na
2: ただ、ちゃんとか原始なばか、ナンバーで陣立ちで。た、ユヤバグレガタだだだ、ヒュグナ、のき、ちゃんとけるじ、もんぐとよ、ヒュグナかもんだれんとさで。なせんじゃいな、のきがなよもぼでけ、ろん、ろだ、だ、ほちん、てんさで。うん。レガテンさでせんじゃ。メソジェギョんじゃ、もぼだよすんそんそんだよすんが。ほら。ただたんじゃいな、 所以呢，人们对别些人呢，就不让把这点也是。但那银行是对这主播的，他那了，人家学过的哦，学个三个单个，人家是呢，当个新闻的，他只是那个一东部工的，但是做卡了，这样的比赛，全部有几马的过呢，我系统这都，就有东这都，也专门没差的，那这些呢，哦，当上上这二零个上上这比赛牛的，他在那呢，哦。
1: 他讲那个阿的要么来生个，阿讲那个要么阿的来生个，
2: 我对你们个叫你们的学过的军训，我不让把他那个要么装我有的，但他这一那公司天了，这不装我的没差的，但我们退了就写个上上等着，我们个也抢到个那样去个，没被总部的人个上上的，对对对，等着，也等下来修厕所的，我们这等下像他答应这一那，等下我不装我个，一个他等到你要啊，侬你要啊，搞到人个他。
1: 等下，新闻对他人情大不答应呢？我们人家需要是那他通干着拉手吧？啊，除了个他，也爱得的哦。他扎头呢，哦，必须行的。第一看了，有钱的，这么着，他看他带我呢，哦，丫头伢子，他现在的呢，哦，你他妈的，姐姐的，连个上上着的个。人情上呢，钱也用给，想要啥都也能着，等着个了。他我们这里需要个军资也能着，路，所送的这不着不等的，忙不就有几的？钱上呢？
0: 强度跟南京个大大跟南北的进来的些人，当然呢，谋杀他个这么个雇佣的人都差的，你嘛的呢，他个这么个南北的呢，他谋杀个这些来的，这些来的这些来嘛的，但这些人就他那他们的人呢，先跑嘛的人啥的，他当然呢，他罗琼啊这人告的，从嘛个他地卡的呢，有结果是他这，的从嘛个他帮我装的看那人呢的，看那。
1: 怕他也禁止全部嘛的，
0: 对，你嘛的呢？当个日暮的，这呢，你嘛个日暮的，这在，怕这抖音啥的。啊对。啊，咱你嘛你嘛的呢？怕这等着音啥嘛的？当我听说这日久了，日暮的真的那个南巴的当特效啥嘛的？嗯。他当真呢？他罗琼啊，那这钱啊，那这，他日暮个日暮个南巴当就多，日暮真的那些当真呢？就在人都里头，就在音啥的，日暮个南巴。
1: 家家家，
0: 肉末的人的哦，他的哦，等着这个多，这些这个多，什么看的做不？肉里肉末人的没得，没那香料里，怕就点的，怕就等着，他当的呢，等着怕就热多啥的。肉肉稀干的。肉肉个稀干当的，当你嘛你嘛个，他肉末的家家家哦，搞个南口个这些多，肉肉个南把有热乎，你点餐的呢，没啥的，他当的我吃点炒的这人性格真的。嗯。你嘛在罗琼啊东西。
1: 哎，
0: 可用的呢，肉末了，加盐切起的真的。就当的呢，汤干的呢，从来点过来是。
1: 热了。
0: 从来点热可是点，也没有嘛是。嗯嗯。但，他当的呢，他从来点上路点我行个，反正这就这过来的，汤干的他不懂过来是真的。嗯。人民的。没，山东的那里，肉末个，辣子切菜那里，反正起码说，我们这里。
1: 就啥的这样子，对俺俺讲，那怕他啥的嘛都，我眼吃点好些嘛的。对啦，对啦，对，用个说人民的军事写过了，都没了偏怕，他个些个好，偏怕他那开越来越偏怕的吃的些呢，就半脚可拖呢。对啦，这等于这样呢，对我说，他军事打打败东头那个南北的阶级就用起来啊，对，你怎么打打俺这个人民的些说，半脚可些说，对你有个。
2: 人民的有个聚散吧嘛，我们那人民那人民个聚集，那有个那有个聚，但是有个人要做起哦，这个人是呢，啥时候得了人民个出去，等啥吧？那有个嘛那的是嘛，那么个将来牛津云南站，他得了牛肉西街云南站，得做要不着的怎么样？啥人得个，半脚得了，让平板的推个，今年是呢，他就抢到了南区吧，等着人民的有个杨国说，人气大不？那我们人民休假个过了，等着去打用的怎么？抢到个人民的有个。
1: 伊那么着来，切切切选着打，杨明呢？得给大白东巴拉，嘎嘎切选着得吃人多，是他叔叔个娘啊，他就你送那呢。 소소보다 배차이나 제이나 까마가지 데크 리네테 탕가체지도 리네테 준지다 답해르바 준든지마다 회막처 소진든지바 답해데 카네 인스나 타다 세쇼가 리네 난자 야메나 뒤레다 튠